धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे CBSE हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई।

0: धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे CBSE हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Are there, that's what he's saying and indicating at this point in time, a big fight as far as the post of the leader of the opposition here is concerned.
1: देखिए यहाँ महाराष्ट्र का जो एपिसोड था सारे सेकेंड
0: ओके वील इन फैक्ट
1: पता चलेगा लेकिन
0: जी
1: बाद से मुक्ति के लिए लड़ाई किया बंगाल में भी बंगाल को परिवारवाद से और बाहर ले आने के लिए उसके ही लोग ही प्रयास कर रहे हैं लोग बोर हो चुके हैं और मुझे लगता है सभी यहाँ प्रकरण देखने को मिले
0: Okay, a bit of a patchy line there with Dilip Ghosh, but I'm going to thank him if we can just reconnect with him and see if we can get a better audio with him on that big developing story that we are tracking here. Now, the expelled TMC leaders are clearly now flexing their muscles, indicating that they are in a position to, in fact, claim the post of the leader of the opposition. ओके दिलीप घोष इज बैक विद अस दिलीप घोष आपसे बातचीत कर रहे थे लेकिन आपका ऑडियो क्लियर नहीं था मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप कैसे देखते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को जहां तक कि ये एक्सप्लोजन और ये स्प्लिट देखा जाता है तृणमूल कांग्रेस में
1: नहीं ये महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी उसी का ही जैसा सेकेंड पार्ट यहाँ देखने को मिल गया लगता है वहां भी परिवारवाद से पार्टी को निकालने के लोगों ने प्रयास किया इतने साल पुराना पार्टी जिसका कोई विचारधारा भी था सिस्टम भी था वो पार्टी टूट गई आज बंगाल में जो चल रहा था सरकार जिस पार्टी का उस पार्टी का ना तो आगे ना पीछे ना कोई विचारधारा ना कुछ है केवल एक परिवार का इच्छा का उनका चलता था और वहां से पार्टी को निकालने के उन्हीं के लोग ही प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि निकल भी जाएगा उसी प्रकार होगा अभी इंतजार करना पड़ेगा घटना प्रभाव किधर जाता है
0: दिलीप घोष शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सो यू हर्ड देयर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल मिनिस्टर सीनियर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन बंगाल टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लोजन विद इन द तृणमूल कांग्रेस विच इज राइट बिफोर आवर आईज ऑल ऑफ दिस वाज बीइंग अंडरप्लेड अ फ्यू डेज अगो बट राइट नाउ इट्स क्लियरली आउट इन द ओपन वी विल बी गेटिंग यू मोर ऑन दैट बिग स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग वेरी क्लोजली पॉजिंग हियर फॉर अ क्विक कमर्शियल ब्रेक न्यूज कंटिन्यूज विद मी ऑन द अदर साइड story that we're tracking very closely. We're pausing here for a quick commercial break. News continues with me on the other side.

0: And story, we're breaking it this hour from the national capital. A deadly fire at an eatery in Delhi is what we're reporting on. Delhi police has put death toll at 10. The fire in Delhi's Malviya Nagar eatery. The fire department received information at around 8:50 p.m. about a fire at a restaurant in the Malviya Nagar area of Delhi. 10 fire tenders were rushed to the spot to control the blaze. 3 people were rescued from the basement of the building. What we're learning is that 10 people have died. Jitendra, my colleague, is getting us the very latest on that story. Malviya Nagar aag mein 10 logon ki maut. Jitendra, kya details share kar sakte hain? Kya hua yahan par? Ye kaun si eatery hai?
1: पड़ रहा है यहाँ पर जो है वो लोग रुके हुए थे. यहाँ एक ये भी जानकारी मिली है कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने यहाँ बगल में गद्दे की दुकान है, उन लोगों ने गद्दे डाल करके जो ऊपर से लोग कूद रहे थे उस को उनको बचाया है. सर आप ये बताइए कि कितने लोग हताहत? जी राजीव, तो यहाँ पर तस्वीरों में पुलिस जो है पूरी तरीके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और जो जला हुआ पार्ट है, एरिया है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कराया जा रहा है, साफ कराया जा रहा है. आग पर काबू तो पाया गया है. 10 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी और ये भी कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है जिस तरीके की जानकारी मिल रही है. तो एक बड़ा यहाँ पर आग के लगने से बड़ा हादसा हुआ है जिसको की लेकर के यहाँ लोकल.
0: Jitendra Bahadur with the very latest on that story. We will in fact get more on that, but these are details that 10 people have died in the posh Malviya Nagar area of Delhi. Arvind Oja also has more. Arvind, aur kya details share kar sakte hain isme fire housing operations ke bare mein? Ye bataya ja raha hai ki 10 log mare gaye hain is hadse mein.
2: बिल्कुल. और देखिए आपको बताऊं कि 10 लोग की मौत हुई है जबकि और जो घायल हैं उनकी हालत भी बहुत. बेसमेंट में रेस्टोरेंट है जिसमें आग लगी थी. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया फायर डिपार्टमेंट के जरिए और सफोकेशन की वजह से कई मौतें हुई हैं जो जानकारी निकल करके आ रही है. तो एक बड़ा हादसा है. अब इसकी इंक्वायरी भी की जाएगी कि क्या इसको एनओसी थी जो बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था. लेकिन एक बड़ा हादसा है. ये साउथ दिल्ली का मालवीय नगर इलाका है. अब यहाँ पर ये रेस्टोरेंट चल रहा था जिसमें 8:50 पर सुबह आग लगी है. अच्छा देखिए बेसमेंट में रेस्टोरेंट था उसमें आग लगी है लेकिन उसका पैनिक ये था कि होटल की ऊपर से भी लोग कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए. आसपास के लोगों ने नीचे की तरफ एक मोटा गद्दा बिछा दिया था सो दैट अगर होटल से कोई कूदता है.

0: तो उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन अभी जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है जबकि और कई लोग बुरी तरह से इस मामले में घायल हैं। जी
1: बिल्कुल अरविंद ओझा विद वेरी लेटेस्ट ऑन दैट स्टोरी। अरविंद, इस समय आप बता सकते हैं ये हादसा हुआ कैसे, दिल्ली फायर सर्विस का इस पर क्या कहना है, ये आग कैसे लगी, इसके बारे में कोई डिटेल्स अगर बताएं।
0: देखिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का काम वो अभी अभी पूरा हुआ है। आग किस वजह से लगी इसके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी करेगी दिल्ली पुलिस की टीम, फायर डिपार्टमेंट की टीम। लेकिन जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि रेस्टोरेंट में ही ये आग लगी है सुबह के वक्त, क्योंकि 8:50 पर रेस्टोरेंट ओपन होना शुरू हो गया था, काम वहां पर चल रहा था और उसी दौरान ये आग लगी है और आग धीरे धीरे फैल गई। काफी भीषण हादसा जिसका विजुअल भी इंडिया टुडे के पास है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट है उसमें काफी भयानक आग लगी है और आग इतनी विकराल रूप हुई कि जो बिल्डिंग, चूंकि बेसमेंट में रेस्टोरेंट था और बाकी ऊपर होटल थे, उसमें लोग कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे जिसमें कई लोग घायल हुए और जिसमें तकरीबन 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है।
2: जी अरविंद, पर और क्या जानकारी आ रही है, किस तरह से ये आग बढ़ी, ये आपने बोला कि कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है पास में, कितने बजे आग लगी?
0: 8:50 पर फायर डिपार्टमेंट को ये कॉल मिली थी कि एक रेस्टोरेंट है उसमें आग लगी है। उसके बाद लोकल पुलिस पहले पहुंच गई थी, फायर डिपार्टमेंट की 10 गाड़ियां वो आग बुझाने में लग गई और जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो आग है वो काफी मैसिव, काफी भयानक ये आग लगी थी। और उसके बाद फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम ने सबसे पहले आग को बुझाया, उसके बाद बेसमेंट में काफी लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया था, उन सभी को अलग अलग अस्पताल में, मैक्स अस्पताल, एम्स अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, कई अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया, उनका इलाज चल रहा था। उस दौरान जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि 10 लोगों की हादसे में मौत हो गई है जबकि और कई लोग बुरी तरह से घायल हैं, उनका भी इलाज करवाया जा रहा है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, आज किस वजह से लगी है इसकी प्रॉपर जांच होगी। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट में ही आग लगी थी 8:50 पर और उसके बाद वहां पैनिक फैल गया क्योंकि ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और नीचे की तरफ बेसमेंट था जिसमें रेस्टोरेंट चल रहा था और जब रेस्टोरेंट में आग लगी तो उसके बाद जो बिल्डिंग है उसमें भी पैनिक हुआ, लोग कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, लोकल लोगों ने भी लोगों की काफी हेल्प की और ये रेजिडेंशियल इलाका है साथ ही साथ कॉमर्शियल यहाँ पर कुछ बिल्डिंग है जिसमें रेस्टोरेंट बना हुआ था।
2: जी मैटर ऑफ एक्सट्रीम कंसर्न। अरविंद, आपको धन्यवाद करना चाहूंगी इस जानकारी के लिए। लेट्स नाउ डिपेंड टू माय कॉलीग जितेंद्र बहादुर हु इज एट दिस वेरी स्पॉट
3: जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ऊपर से लेकर के नीचे तक ये कंप्लीट जल चुका है। ये बताइए सर, आप दिल्ली पुलिस से हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो है आग लगी? जब
4: कुछ नहीं कह सकते, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
3: कौन कौन लोग हैं सर? किसी को और फंसे हुए हैं सर?
4: अभी सर्च चल रहा है, ऊपर सर्च चल रहा है, सब चल रहा है,
3: ऊपर के टॉप फ्लोर में,
4: हाँ सब जगह पूरे में सर्च चल रहा है।
3: फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के लोग
4: सर चल रहा है, फायर ब्रिगेड दिल्ली पुलिस सर चल रहा है।
3: तो यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए जो लोग हैं इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के लोग हैं, ऊपर का जो महला है आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में उसमें टॉप फ्लोर में अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको लेकर के सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है।
2: Jitendra Bahadur, they're getting us this ground report from the very site where this fire is trying to be doused by the fire personnel who are at the site. Several fire tenders who were rushed to the spot. This is from the Dehru Place fire station where the blaze erupted at around 8:50 in the morning is when the call went. And that's the initial statement that came in from the Delhi Fire Service saying that 3 people have been rescued but unfortunately 10 people have lost their lives and several who are injured. Where they are trying to get all those out who are feared to be trapped. And we are now cutting across to more breaking news just coming in of how a woman jumped when the fire broke out. This incident that was caught on camera, we'll try and play out that video. And we are yet to get details of whether that woman is safe, from where exactly she jumped, what was the height that she jumped, but she was fearful that she may not be able to survive as the fire kept escalating, and that's when she chose to jump. Horrific incidents that are being reported. Let's listen in to this particular video.
5: Hospital ambulance wala ka phone na kar je ye maange
2: There you see, this is a very, very cramped area. So as my colleagues tell us that the ground was a restaurant. There was also the basement. And the top floors are probably residential floors. Unfortunate that this woman who jumped or was thrown out, unclear at this point, hoping that she survived. But there you see, she jumped from... probably the first floor or the second floor to save her life as the fire kept escalating. And this entire area that is very, very cramped has some commercial establishments, has residential properties largely. There you see the buildings that are literally adjacent to each other, and also fear of how the fire can escalate even into the other structures. My colleague Jitender, who is on the ground, let's take a look at the rescue operations.
6: Shuib, Israr bhai, Anis, ye log aaye the, main ke baad aaya tha. To in logon ne aur ek fazal tha, inhone gadde nikal ke samne shop se yahan bichhaye the, upar third floor se चार नाइजीरियन कूदे थे, जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी. तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है, शटर काटने के बाद
7: अंदर घुसे. वहां पे हमें ब्रॉड डेड भी पेशेंट जो बिल्कुल ही थे, बिल्कुल चले हुए थे, वो भी लेके आए हम. और जो अनकॉन्सियस थे, जिनको हमने खुद अपने हाथ से एम्बुलेंस में CPR दे के मैक्स में, नियर बाय यहाँ मैक्स या उसमें शिफ्ट किया था.
3: कितनी डेड बॉडी यहाँ से आप लोगों ने निकाला और कितना लोग जो है हॉस्पिटल में इस समय भर?
7: ऐसे सर, ब्रॉड डेड तो डेड बॉडी तो नहीं बता सकते, मतलब हम ये बता सकते हैं टोटल पेशेंट हमने अराउंड 30 के आसपास, हमने मैक्स में 30 to 35 के आसपास उसमें शिफ्ट करे, जिसमें से अनकॉन्सियस भी थे और कुछ होश में भी थे.
2: All right, so those are the eyewitness accounts coming in of how some who unfortunately lost their lives and their bodies were recovered, but some who managed to get saved, but they are massively injured. They are receiving treatment. Let me also bring in my colleague Arvind Oja, who is with us on the phone line. Arvind, kuch reports aa rahi hain jinka kehna hai ki preliminary investigation bata rahi hai ki LPG cylinder explosion tha, jiski wajah se structure collapse hua, fir aag badhti rahi, aur ye shayad utensil polishing facility se tha. Kya ye confirmation hai?
0: देखिए, ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है कि जो गैस सिलेंडर है उसमें ब्लास्ट हुआ है, लेकिन आग का जो नेचर है, जिस तरह से आग लगी, वो यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो रेस्टोरेंट है उसमें काम चल रहा था और उसी दौरान ये आग लगी है. जो घायल हैं उनका आंकड़ा बड़ा है, जो रेस्क्यू किए गए हैं वो तकरीबन 20 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है. लेकिन जो अभी अभी हमें जो जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस से, वो काफी चिंताजनक है. वो ये कि और जो घायल हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जो उनका इलाज है वो अस्पताल में करवाया जा रहा है. जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से आग लगी, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी. साथ ही साथ ये भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि क्या ये जो बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था, इसको फायर की NOC मिली थी या नहीं मिली थी. लेकिन ये बहुत दर्दनाक खबर है कि ये जो आग लगी थी उसमें झुलसने से और कई की सफोकेशन से मौत हुई है. तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर है, फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर है और इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है. जी
2: जी अरविंद, बने रहिए हमारे साथ, अभी जाएंगे जितेंद्र बहादुर पर. जितेंद्र हु कंटिन्यूज टू बी ऑन द स्पॉट, लेट्स टेक अ लुक एट हाउ द रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू.
8: अराउंड 30 to 35 लोग हैं, उसमें फायर फाइटिंग टीम है, दिल्ली पुलिस है या हम लोकल्स हैं जिन्होंने मेहनत की है. सबने एज अ टीम काम किया है और इसकी वजह से आए हैं. और इवन मैक्स हॉस्पिटल की जो फायर फाइटिंग टीम है वो भी यहाँ पर अवेलेबल.
3: जो फॉरनर लोग हैं वो लोग किस तरीके से, क्या यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर जो था उसमें होटल था, रुकने का भी स्थान?
7: जिस हिसाब से सर हमने अंदर देखा था तो रूम से होटल ही टाइप का लग रहा है. अब इसमें श्योर तो है नहीं, जल गया है, बट वो रूम्स के अंदर ही थे. कुछ भाग रहे थे, कुछ जीनों पे भी बेहोश मिले हमें, कुछ रूम के अंदर, कुछ बाथरूम के अंदर भी बेहोश मिले थे. मोस्टली फॉरनर थे सर, मोस्टली लोग यहाँ पे फॉरनर थे. हाँ,
8: जो हमने सबसे लास्ट में दो बंदों को निकाला है वो दोनों आई थिंक नाइजीरियन है और वो वॉशरूम पे पोर्ट पे बैठे हुए थे एक दूसरे को सेव करने के लिए, और आई थिंक वो डेड थे. वो अनकॉन्शियस.
3: राजीव यहाँ पर हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से. देखिए राजीव, यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, और एक बार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रास्ता जो है वो मेन रोड की तरफ जाता है, और ये जो दूसरा रास्ता है यहाँ से आगे मैक्स हॉस्पिटल की तरफ ये रास्ता जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता तो चौड़ा है लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है मेन रोड पर लगी हुई हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर जिस वक्त पहुंची उस वक्त ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से राजीव जल रही थी, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग ये जल करके खाक हो चुकी है. इसमें ये जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग जो फॉरनर भी रहे हैं वो तमाम लोग यहां पर इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं, और ये जो मैक्स हॉस्पिटल में इनको रखा गया था. और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से जब उनको निकाला गया तो उन लोगों की, बहुत सारे लोगों की बॉडीज भी निकाली गई. इसके साथ साथ जो यहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनके द्वारा यह भी जानकारी दी जा रही है कि यहां पर दिक्कतें उस वक्त हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश लगातार, चाहे फायर ब्रिगेड हो, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं. इन लोगों ने सुबह से ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लाया है. इसके साथ साथ लोकल्स जो हैं, ये सामने की जो शॉप आपको दिख रही है मसूरी कॉटन शॉप, यहां पर गद्दे बनाने की दुकान है. जानकारी ये मिल रही है कि यहां से जो है गद्दे डाल करके जो ऊपर से लोग कूद रहे थे उनको बचाया गया, हालांकि वो वीडियो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है. किस तरीके से लोगों को इस दुकान में गद्दे डाल करके बचाया?
9: ये हमारी अपनी दुकान है, हमारे अंकल है, इन्होंने गद्दे दिए तो वो पूरी रोड पे गद्दे बिछाए तो थर्ड फ्लोर से बंदे कूदे हैं.
3: थर्ड फ्लोर से
9: कूदे हैं सीधे फोड़ के, और बाकी जो हम ऊपर पहुंचे, हम तीनों भाई ऊपर ही थे, ऊपर गेट जैसे ही खोला है तो दो तीन नाइजीरियन थे वो डेड कर गए थे.
7: काउंटिंग हमने करी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट सब जगह थे लोग, सब अनकॉन्शियस थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं.
3: धुएं की वजह से? पूरा
7: धुएं की वजह से मोस्टली अनकॉन्शियस थे, क्योंकि जब फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस टीम आ गई थी, फायर फाइटिंग टीम ने जब इसको बुझा दिया है, बुझने के बाद जब हम अंदर घुसे टीम के साथ तो हमसे भी घुसा नहीं जा रहा था, तो हालत हमारी भी खराब थी, उन लोगों की भी खराब थी, बट सबने इंक्लूडिंग लोकल थाना जो है हमारा मालव नगर का, उनके लोगों ने सबने मिलके हम अंदर घुसे.
3: तो राजीव जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग अनकॉन्सियस थे उस दौरान, ये बिल्डिंग जो है एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का, इस चैनल को काटा गया है, क्या जानकारी मिल रही, क्या ताला बंद था, क्या
9: ये लॉक था? वो फायर वाले आए थे, उन्होंने कैंची दी थी, उससे काटा है.
3: जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों, ताला क्यों लगा?
9: ये इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बंद था, फिर इन्होंने चैनल से काटा, उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया, फिर अंदर घुसे, उससे काटा, फिर हम अंदर घुसे, फिर ये भी घुसे. इनको थोड़ी जानकारी थी सांस वास के लिए तो इनको.
3: बिल्कुल राजीव, जो तस्वीरें हैं और जो कि यहाँ पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो कि लोकल लोग हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि ये जो सामने तस्वीर आप दिखाई पड़ रही है कि
2: And And that's my colleague getting you all the details from the ground of how the rescue operations were carried out. Several eyewitness accounts coming in of how some who were trapped in that building, in that structure, chose to jump. The locals, of course, helped by just laying down mattresses on that entire stretch to be able to save as many people as possible. But the smoke inside that structure, that was just so much that led to a lot of suffocation. Let's once again take a closer look at these pictures and most importantly what the eyewitness accounts state.
3: चैनल है ये पहले शुरुआत में बंद था और इसमें ताला लगा हुआ था. आखिर क्यों ताला लगा हुआ था जब यहाँ लोग रह रहे हैं होटल में और उसके साथ साथ ऊपर जो है रेस्टोरेंट भी है, तो ताला आखिर क्यों लगाया गया था? इसकी वजह से जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाए और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने जो है इस जगह के सीधे जो सामने की तरफ ताला है उसको तोड़ा गया. तो ये ताले को तोड़ने के बाद जो है फिर जो यहाँ पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर लोकल लोग मौजूद थे, उसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के जवान, वो तमाम लोग मौजूद थे. उन लोगों ने इस जगह से लोगों को निकालना शुरू किया.
2: So there you see 10 fire tenders that rushed to the spot. It was about 8:50 in the morning when the call went. Fire officials, police personnel who are inspecting the entire premises to be able to remove all those who are trapped in this building and around. The locals who really helped and laid down mattresses all across the road so that those who were trapped inside the building chose to jump, and there was an attempt to save their lives. Remember, while 10 unfortunately have lost their lives, there are many who are injured grievously. They are in nearby hospitals receiving treatment. Those are the pictures on your screens of the rescue operations that are underway. Meanwhile, fire personnel also talking about the rescue operations. Let's listen.
10: बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है. चार बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुके हैं, वहां से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं घायलों को भी.
2: And those are the voices coming in as the rescue operations continue. It is about 4 hours since this fire started escalating, and there you see that entire structure. Why also worrisome? Because it is a very packed area with commercial establishments, with residential structures all adjacent to each other, and that caused concern all the more. This incident that has been reported a day after another major emergency that happened in the national capital. 10 people were injured when a suspected LPG cylinder explosion happened that led to the collapse of a building. That had happened in Delhi's Mukundpur, and this has happened this morning in Delhi's Malviya Nagar. Multiple eyewitness accounts that are coming in on what exactly caused the fire, and even as preliminary investigations do put out details of how it could possibly be an LPG cylinder explosion. But one eyewitness saying that loose wires that may have caused a short circuit. That's another version that is coming in, that the fire spread from nearby property. Loose wires that may have caused a short circuit that led to the fire, and most of the deaths that have occurred is because of extreme suffocation. There was so much smoke trapped inside this structure that people could barely breathe. They were trapped inside, some who chose to jump, some who were unfortunately just trapped and could not come out. And those loose wires, according to eyewitnesses, that may have caused a short circuit, that may have led to that fire. Remember, it was at around 8:50 in the morning, 8:30 to be specific, when the fire started escalating, and the call that was made to the nearby fire station. 10 fire tenders that were rushed to the spot. While 10 have been confirmed dead, this casualties death toll, I beg your pardon, that could well increase, as many who are grievously injured, they are in nearby hospitals, they are receiving treatment at the moment. So let's try and explain to you and break down what has happened. This was a restaurant in the ground floor, and also the basement where this restaurant was functioning from. There was The fire that broke out at about 8:30, that's when the locals called the nearby fire station in Nehru Place. 10 fire tenders were rushed to the spot, but there were several people who were trapped inside the structure. So it is supposedly, as according to eyewitnesses, a structure with more than two floors. So basement, ground, first floor, second floor, and even the third floor that may have been partially built from where people may have jumped. There was a close by shop. It was a mattress shop. So the locals jumped to help those who were trying to find a way out. They laid down those mattresses on the road, and that's where those who were trapped inside this structure, inside this building where the fire broke out, some of them who chose to jump. Now, this was also a restaurant where some could have been African nationals. Remember, these are versions coming in from eyewitnesses.
11: क्योंकि हमें नहीं पता शायद लीज पे दे रखा है या ओनर का है वो यहाँ नहीं आता कभी हमने देखा नहीं
3: लेकिन क्या एग्जिट रूट इसमें किसी भी तरीके का नहीं था सिर्फ
11: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं यही है सिर्फ यही तो है सर मैं नहीं है बस ये है
12: पीछे तो आप देखोगे
3: सामने की तरफ रास्ता है और इसके साथ साथ जो लोग बेसमेंट में थे
11: उसमें जो लेटे बेसमेंट वाले में हाँ क्योंकि ये आगे रास्ता ये बंद था इधर से होटल का मेन रास्ता था ना ये वाला बीच वाला रास्ता है हाँ
13: इसी में मेन रास्ते में ही आग लगी थी जो मेन रास्ता है फिर ये इलाका टूटा फिर यहाँ की इनकी जो शॉप है यहाँ से गद्दे डाले फिर लोग नीचे से कूदे ऊपर से कूद कूद यहाँ पे कुछ को बचाया है फिर आगे ये शटर काटा है ये बंद था ये पूरा
2: एंड मोर वॉइसेस कमिंग इन दिल्ली मिनिस्टर who is also speaking on this matter, Mr. Ashish Sood. Let's listen in.
14: गाड़ियां यहां पहुंची भयंकर धुएं के बीच में तीन तरफ से फायर ब्रिगेड ने वहां काम किया है मुझे प्राप्त इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं रास्ते में हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में मैं वहां नहीं पहुंचा था 37 लोगों को वहां से फायर ने निकाल के हॉस्पिटल भेजा है हमारे फायर ब्रिगेड के लोग हॉस्पिटल के साथ संपर्क में है हमारे फायर ब्रिगेड के लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं और वहां से जानकारी एकत्र कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर मैं भी मौके पर पहुंचने वाला हूं और जो भी उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहे हैं वो जैसे ही समाप्त होंगे तो हम सारी जानकारी
15: आप बता रहे हैं कि 10 मिनट में आप भी पहुंचने वाले हैं आशीष जी कितने लोगों की जान गई है कितने लोग घायल हैं आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है
14: मैंने आपको बताया मेरे पास प्राप्त जानकारी में 37 लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया है फायर के लोग वहां पर है प्रारंभिक डॉक्टरी जांच के बाद जब डॉक्टर हमें सूचित करेंगे तभी मैं आपको कोई आधिकारिक जानकारी दे पाऊंगा
15: आशीष जी हमारे पास जानकारी आ गई है 20 लोगों के हमें जाने की खबर मिल रही है ये बहुत बहुत चिंताजनक है
14: मैं आपके पास जो जानकारी आई है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा दुखद घटना है जब तक मुझे डॉक्टरों के माध्यम से आधिकारिक जानकारी नहीं मिलेगी मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मुझे थोड़ा समय दीजिए मौके पर पहुंच के आपसे दोबारा बात करता हूँ
15: जी एक आशीष जी एक आखिरी सवाल बता दें क्या उसे संपर्क शायद टूट गया है Ashish Sood, Jokim.
2: All right, so that's the information coming in from Delhi Education Minister Ashish Sood, who says that he's en route to this very spot where the fire broke out, as he has confirmed that 37 who were injured have been rushed to a nearby hospital. But extremely unfortunate, the death toll is rising. It is now confirmed 20 people have lost their lives in this fire at that Delhi eatery. Because remember, this was not just a restaurant, but also residential floors that were on top of this restaurant. And there you will get an idea from the pictures on your screens of this area in Malviya Nagar in Delhi, where there are several commercial establishments, there are residential structures are very, very close to each other. There you see those loosely hanging wires and an eyewitness account that came in of how these loosely hanging wires may have also led to a short circuit that may have caused the fire. Remember, we are still waiting for a confirmation from the investigating team. But right now, the focus is on removing as many who are trapped inside the structure or nearby structures, as there is a lot of suffocation because of the extreme smoke due to this fire. As eyewitnesses say that it is because of this smoke that many have lost their lives because it just led to so much suffocation that they could not find an exit route from this building. Of course, the investigation that will happen later will also reveal whether these structures were adhering by all the fire norms, whether all the NOCs had been sought, whether there was any sort of a violation. Remember, some reports that also suggest that it could be an LPG cylinder explosion. But all of this is unclear at this point. Remember, these are only conspiracy theories, or these are accounts from those eyewitnesses who actually saw what happened. But it is unclear at this point to what happened. 8:30 is when the fire broke out. That is when they called the Nehru Place Fire Station. 10 fire tenders were rushed to the spot when they started performing the rescue operations. The firefighting team of the Delhi Police of the fire station.
12: It is not possible. और ये सही भी नहीं है. लेकिन क्या कारण हुआ है? नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ. ये तो जांच का विषय है. शॉर्ट सर्किट हुआ.
3: इसी लेकिन जो जानकारी मिल रही कि इसमें बेसमेंट की तरफ जो चैनल था उसमें ताला लगा हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और उसको जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो उसको काट करके उस चैनल को खोला गया.
12: निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये जो होटल बना हुआ है इस पर बीएनबी का कोई लाइसेंस था इसके पास और उसके कारण से यहाँ जो सामने मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं. ये 9:51 की घटना है और उसी के बाद से हम सब लोग 8:51 की घटना है. उसी के बाद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय नागरिकों ने और फायर ब्रिगेड ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने और खासकर इनका जो बेसमेंट का एक रास्ता.
3: सर, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं थी, चैनल बंद था, उसके बावजूद भी इतने लोग यहाँ पर रह रहे थे.
12: मेरा ये कहना है कि सवाल उठाना आपका काम है और सवाल आप उठाएंगे ही. मेरा काम, पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो है राहत के कार्य. मेरी प्रायोरिटी है पहले लोगों को बचाना. मेरी प्रायोरिटी है लोगों को यहाँ से निकालना और वही काम हम कर रहे हैं. अब ये सवाल जवाब जांच के विषय हैं. वास्तव में जहां जो जिसने जो कमी की होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से रूथलेसली करनी चाहिए और इसमें किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है. जिन लोगों ने भी कोई गलत तरीके से कार्य किया है हम किसी भी गलत चीज के साथ नहीं, लेकिन पहले ही मेरी प्राथमिकता यहाँ पर बचाव का कार्य, राहत का कार्य और अपना जो काम करना है वो काम हम कर रहे हैं.
3: बिल्कुल, तो बचाव एवं राहत का कार्य जो है इस पूरे इलाके में किया जा रहा है. एक बार फिर से आज तक के दर्शकों को तस्वीर दिखाते हैं पीछे की तरफ की, किस तरीके से आप सामने देख रहे हैं कि ये पूरी जो बिल्डिंग है ये धू धू करके 8:30 बजे के आसपास ये पूरी जली और इसके अंदर, इमारत के अंदर करीब 37 से 38.
2: And we are trying to get you more and more voices from the very spot. Delhi MLA confirming that the fire was reported at around 8:50. Now, this is a Delhi eatery in this very location where the fire broke out. Arvind Oja, who is also with me on the broadcast. Arvind, abhi rescue operations ka current status kya hai? Unfortunately, death toll keh rahe hain 20 pe confirm hua hai. But jaise ki Ashish Suji ne bataya ki 37 logo ko wahan se rescue kiya gaya. Unko nearby hospital pahunchaya gaya. Unki halat गंभीर है. अभी क्या वहां पर सिचुएशन है?
16: देखिए, आपको बताऊं कि 30 लोगों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में. एक बड़ा हादसा है, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं. जो घायल हैं उनको 3 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, मैक्स, एम्स और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल. लेकिन मैं सिर्फ करता हूं आपको विश्वास दिखाने की, ये जो तस्वीरें है मैं आपको सीधी दिखाली. पुलिस है उसने सील कर दिया इस पूरे इलाके को और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सामने की तरफ जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं उस बिल्डिंग में आग लगी थी और फिलहाल अगर देखें यहां पर तो जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरे इलाके को सील कर दिया है. लेकिन एक बड़ा हादसा है, इस हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है जबकि 35 लोग पूरी तरह से घायल हो गए हैं इस हादसे में.
2: अरविंद, क्या अभी कहा जा सकता है कि किस वजह से ये आग लगी? क्या ये एक मैनमेड ट्रेजेडी है? क्या ये नेग्लिजेंस है? क्या इस हादसे को बचाया जा सकता था? एक आईविटनेस का कहना है कि वहां पर जो लूज वायर्स हैं उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ. दिस हैज बीन आल्सो कंफर्म्ड द दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स कंडोल द 20 डेथ्स that have happened in the Delhi hotel fire. This, remember, as the death toll could well go higher given how severely injured are those who are receiving treatment at this point. Arvind, aapke paas wapas aana chahungi khaskar samajhne ke liye ki kis tarah se ye aag lagi, kya ye kisi tarah ka negligence, man made tragedy hai, kya is hadse ko bataya ja sakta tha. Kal hi wahan Delhi ke Mukundpur mein ek aur hadsa hua aur kya yahan par fire norms ko कंप्लीटली फॉलो किया जा रहा था, किसी तरह का वायलेशन था, और क्या जानकारी है?
16: यार तो सामने आ रही है, बेसमेंट में अगर रेस्टोरेंट चल रहा था तो उसको क्या फायर की एनओसी दी गई थी? सर ये जांच का विषय, अगर फायर थी तो वो भी अपने आप में एक जांच का विषय, एनओसी कैसे मिली? लेकिन सीधे मैं आपको स्पॉट से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सामने की तरफ जो रेस्टोरेंट है और आसपास पुलिस की टीम है, पूरे इलाके को घेर दिया गया है। नीचे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं वहां पर बेड्स, वहां पर गद्दे जो लोकल लोग थे उन लोगों ने बिछाए थे, ताकि ये जो पूरी बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी, नीचे बेसमेंट था और ऊपर की तरफ से लोग कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, और इसी में 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया था, जिसमें से 20 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, कई की झुलसने से मौत हुई है, जबकि कई सफोकेशन की वजह से उनकी मौत हुई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा और सीधे सीधे लापरवाही की बात इसमें सामने आ रही है। बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था, जबकि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें ये अभी इनिशियल जानकारी है कि इसमें लोग रह भी रहते हैं, स्टे किए हुए थे, और जब ये आग लगी 8:50 पर तो लोग भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, बिल्डिंग से कूदने लगे। आज तक के पास वो तस्वीरें भी हैं जब लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद रहे, महिला बिल्डिंग से कूद रही है, और उसके बाद फिर यहाँ भगदड़ मच गई, लेकिन आग काफी विकराल रूप अख्तियार कर चुकी थी और सभी को रेस्क्यू किया गया। जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे, 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 20 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अब इसकी जवाबदेही किसकी है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने कंडोलेंस तो कर दिया, लेकिन लापरवाही किसकी होगी, क्योंकि इस तरह के हादसे लगातार दिल्ली में होते रहे। अभी कुछ दिन पहले एक 5 की बिल्डिंग गिरी थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, उसमें भी खाना पूर्ति की गई। अब ये रेस्टोरेंट में आग लगी है और 20 लोगों की मौत हो गई। ये बिल्डिंग में फिर आपको दिखाना चाहूंगा, ये बिल्डिंग है, 8:50 पर आग लगी, बेसमेंट में रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट के अंदर आग लगी, भगदड़ मच गई, पैनिक से स्थिति हो गई, लोकल लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 20 लोगों की इसमें दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, 35 लोग घायल हैं, बाकी जो घायल हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये बड़ा हादसा दिल्ली में सामने आया है, जिसमें एक रेस्टोरेंट में आग लगी। अब सवाल ये है कि ये रेजिडेंशियल इलाका भी है, रिहायशी इलाका भी है, और यहाँ पर बेसमेंट में रेस्टोरेंट भी चल रहा था, रेस्टोरेंट कैसे चल रहा था इसकी जाँच बिल्कुल की जानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, जांच पड़ताल की जा रही है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ है, और ये सामने की तरफ आपको बिल्डिंग आ रही है जूम करके, और ये नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं ये तस्वीर, जरा इस तस्वीर को देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं ये एक बेड है, ये यहाँ पर इलाके के लोगों ने गद्दे वगैरह फेंके थे, जिससे बिल्डिंग के ऊपर से कोई कूदता है तो उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें आई हो बेहद दर्दनाक है, जब ये बिल्डिंग में आग लगी तो उसके बाद लोग कूदते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए, पैनिक फैल गया था। शुरुआती जो जानकारी आई उसके मुताबिक जो बेसमेंट रेस्टोरेंट था उस रेस्टोरेंट में आग लगी है, उसके बाद पैनिक फैल गया पूरी बिल्डिंग में। बिल्डिंग के ये जो बिल्डिंग है आप देख पा रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर से लोग कूदते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। अभी को रेस्क्यू किया गया, जो आसपास के लोग हैं उन्हें थोड़ी सूझबूझ दिखाई, चूंकि बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे तो नीचे की तरफ मोटा गद्दा वो रख दिया, जिससे लोग ऊपर से अगर नीचे कूदे तो उनको चोट नहीं लगे। बावजूद उसके भी 35 लोग घायल हुए, रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें भी आज तक के पास जिसमें दिखाई दे रहा कि दर्दनाक तरीके से लोग बेहोश हुए हैं, और उसके बाद आज तक को जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के जरिए जानकारी मिली इस दर्दनाक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग बुरी तरह से घायल है, 35 लोगों में अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन इसमें जवाबदेही किसकी है? दिल्ली में अलग अलग
2: जी, पर अरविंद अब इस पर और सवाल उठेंगे, क्योंकि बात सिर्फ इस एक स्ट्रक्चर की नहीं है, ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं दिल्ली में जहां पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जहां पर रेजिडेंशियल एरियाज हैं, बहुत ऐसे लूज हैंगिंग बायर्स हैं। एनओसी किस बेसिस पर दिया गया? अगर एक रेस्टोरेंट था वहां पर तो क्यों वहां पर एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट प्रॉपर नहीं थे? एंड दैट्स द कॉन्फर्मेशन कमिंग इन, द होटल वॉज ऑपरेटिंग बियॉन्ड लाइसेंस लिमिट्स।
17: लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअल्टी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है, और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है पूरा, फाइनल सर्च कर दिए, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया।
18: कितनी डेथ्स अभी तक क्लियर हुई?
17: डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई है उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई है और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड है।
18: सर, क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था? कमर्शियल थी, रेजिडेंशियल?
17: देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ये पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे ये अभी मेरे डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है।
18: सर, फॉरनर्स भी रह रहे थे?
17: हाँ, फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं जो हमने, जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स की थी। स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है, बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग।
2: And there you see, those are the violations that are now coming to light. It was a bed and breakfast arrangement, a bed and breakfast facility that the license originally allowed. As per that facility, only 6 rooms that were allowed in this arrangement, in this hotel that was running. However, there was a clear violation. 25 rooms that were in this hotel, in this entire building, largely as the locals suggest, that a lot of the foreign nationals who used to live in this hotel, why? Because they would come for health care to the nearby hospital, since this hotel was very close to the Max Hospital in this area. That is also why a lot of foreign nationals chose to stay here. But how exactly was that hotel functioning? Because the Delhi government license that clearly allowed the bed and breakfast facility, but only with 6 rooms, not with 25 rooms as it was actually running. And that is what made it all the more difficult, because when the fire broke out, now while they're still trying to investigate why the fire broke out, whether it was a short circuit or an LPG cylinder explosion, but while the fire broke out, this entire area was too crowded. It became very suffocating for those who were trapped inside this building. It was a major violation of the bed and breakfast facility as per what the government had allowed, a 6-bedroom facility, a 6-room facility that the government had allowed. But there were 25 rooms functioning because they wanted to maximize the output. They wanted to draw more revenue. And that is how they allowed more and more people to live in this building, which was not allowed. It was a bed and breakfast facility. The fire broke out at about 8:30 in this morning. 8:50 is when the locals informed the Nehru Place Delhi Fire Station. And that is when 10 fire tenders rushed to the spot. At 8:50, 10 fire tenders rushed to the spot. It is about 12:30. 4 hours that the rescue operations have been going on. Extremely unfortunate. 20 people have lost their lives in this fire. And remember, the death toll that could well increase given how the situation is looking at this point, because more than 37 who were taken to the nearby hospitals, including AIIMS and Max, that is very, very close to this facility, but they are in a grievous condition. They have received a lot of injuries and they are still struggling for life. Let me take this back to my colleague Arvind Hoja, who is on the spot. Arvind, hame क्लियरली दिखाइए इस एरिया में किस तरह से वायलेशन हुआ, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर, एक बेड एंड ब्रेकफास्ट फैसिलिटी की वायलेशन है। 6 कमरों का लाइसेंस इनको मिला था, बट यहाँ 25 कमरे फंक्शन कर रहे थे। और ना सिर्फ मालविया नगर में, पर दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स और रेजिडेंशियल एरियाज सब आपस में सटे हुए हैं, और शायद यहां पर ऐसे वायलेशन हो रहे हैं।
19: बिल्कुल, और देखिए अभी मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जब ये जो बिल्डिंग है, इसकी बिल्डिंग
2: अरविंद, दे आर गेटिंग अस ऑल द डिटेल्स, बट द नेटवर्क इज क्लियरली फ्लक्चुएटिंग गिवन हाउ a lot of rescue personnel are on the site at this point. That includes the Delhi police, that includes the fire personnel, that includes the medical services who are on the ground, and most importantly the locals who jumped to help those who were trapped in this building. Of course, like you see, that this entire area has now been cordoned off by the cops, but the rescue operations that are still underway. Remember, until a short while ago, the death toll had been confirmed at 10, but extremely unfortunate, 20 people have lost their lives in this fire. Why is it that such a violation occurred? Why were there no checks? Because the Delhi government license that clearly allowed this bed and breakfast facility, which was popular for the reason that a lot of foreign nationals chose to stay here. Why? Because it is comparatively cheaper and they could address their health concerns. That is why they were here. Even according to reports that have come in of those who have lost their lives, include these African nationals, but all of these details that are yet to be confirmed. Let's cut across to Jitendra Bahadur, who is on the spot.
3: Hotel bana hua hai. Iske saath saath yahan aap tasveeron mein dekh rahe hain ki Lemon Green Inn. ये भी यहाँ पर रूम्स मौजूद हैं, तो इस तरीके की जानकारी है यहाँ पर. तो बहुत सारे ऐसे लोकेशन यहाँ पर दी गई हैं जिसके आधार पर यहाँ पर होटल दिए गए हैं. इस होटल की अगर बात करें जिसमें आग लगी है और इतने लोगों की मौत हुई है, इसके बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि 6 रूम केवल यहाँ पर उसको इजाजत मिली थी यहाँ पर, लेकिन 25 से 26 रूम को है उनके द्वारा दिया गया था. यहाँ पर ये लोग उठाते थे और उसको जो है बुक किया जाता था इनके द्वारा. तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है. तो नॉर्म्स का उल्लंघन पूरी तरीके से इस पूरे इलाके में किया गया है. यही वजह है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो होटल के मालिक हैं वो आखिर कहां पर हैं. हालांकि रेस्क्यू और जो रिलीफ ऑपरेशन यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है. जो ऊपर तक आग लगी हुई थी उसको पूरी तरीके से बुझा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो होटल के ओनर हैं वो यहां पर किसी भी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. हमने जैसा कि बताया था आपको कि माइक्सा इन रूम्स अवेलेबल यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है. इसके बगल में जो है वो दूसरी.
2: All right, Jitendra Bahadur also scanning this entire area, inspecting where exactly such violations are taking place. Remember, this is Delhi's Malviya Nagar, and if more investigations are carried out, this is not a story that could just be restricted only to Malviya Nagar. Several such areas that may be illegally functioning, that may be functioning beyond the capacity of what the Delhi government license allows. Remember, this particular establishment where the fire broke out was a bed and breakfast facility. But the license clearly allowed 6 rooms to be functioning out of that facility, whereas 25 rooms were functioning out of that facility. Clear violation that has come to light as far as this particular facility is concerned. But the investigation that is underway, what exactly caused the fire? Because initial reports suggested that it could have been an LPG cylinder explosion. Later, eyewitness accounts came in of how they also said that the wires that are hanging, and you can very clearly see how this area has a lot of those hanging wires, that there could have been a short circuit that could have led to the fire. Of course, confirmation that will come in from the investigating team. But this entire area, like you see, has been cordoned off by the Delhi police, by the fire personnel, by the health services, medical services team who rushed to the spot. 37 people who are grievously injured. They're receiving treatment at this point. The death toll that has now risen to 20. Let me take this back to Jitendra Bahadur, who continues to scan this entire area. Jitendra, if you can hear me, do take us through details. Yahan par aap bata rahe hain ki kai aisi establishments hain, commercial establishments, bed and breakfast facilities, hotels, jo ki yahan par rooms chala rahe hain, but this is beyond what is allowed. This is beyond the capacity that they are supposed to function in.
3: बिल्कुल, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और सबसे पहले उस बिल्डिंग की तस्वीर यहां पर दिखा देते हैं जिस पर आग लगी थी. ये पूरी तरीके से जल चुका है और इसके साथ साथ यहां पर और भी दूसरे होटल्स मौजूद हैं जो लोग यहां पर इसको किराए पर उठाते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हमारे साथ बीजेपी के जो विधायक हैं सतीश माल आप मौजूद हैं सर. मालवीय नगर में सर इतनी बड़ी घटना हुई, आसपास और भी बहुत सारे होटल हैं, लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि मैक्स हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ पर लोग किराए पर आकर के रहते हैं और अपना इलाज कराते हैं.
12: ये बीएनबी है और यहाँ मैक्स के कारण से काफी लोग आते रहते हैं. कुछ अलग अलग पास की जो कंट्रीज हैं वहाँ के लोग भी आते हैं इलाज कराने के लिए. तो बहुत दुखद घटना हुई है. हम सुबह यहाँ 9 बजे से यहाँ पर हैं, 8:51 पर ये घटना हुई थी और तब से फायर ब्रिगेड ने बहुत ही जल्दी के साथ तुरंत इसकी कार्रवाई की और उसमें पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ आकर के लगा. खास करके दिल्ली पुलिस के कुछ जवान थे जो मालवीय नगर पुलिस स्टेशन से हैं, जो बिना किसी इक्विपमेंट के अंदर घुसे और उन्होंने काफी बचाव कार्य किया। हमारे यहाँ के संगठन के कार्यकर्ता जिन्होंने रजाई गद्दे वगैरह रख करके कुछ लोगों को ऊपर से रेस्क्यू कराया, तो दुखद घटना है और निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।
3: सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें सेफ्टी की जो है मौजूद नहीं थी, इस वजह से जो है ये सारी दिक्कत हुई, उसको लेकर के अब किस तरीके की कदम बढ़ाए?
12: देखिए, हमने तो कहा है यहाँ डीएम एसडीएम डीसी सबको कहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही सेफ्टी नॉर्म्स में बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि ये अवेकनिंग कॉल है। क्योंकि यहाँ पर अगर बीएनबी है तो वहाँ पूरी तरह से नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन निश्चित रूप से देखेगा ही, और जिसके कारण से ऐसा हुआ है उसके खिलाफ बिना किसी उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
3: जिसके कारण ये ऐसा हुआ है और जिस वजह से ये तमाम घटना घटित हुई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये सतीश उपाध्याय जी का यहाँ पर कहना है। एक बार तस्वीरों में आपको फिर से दिखाते हैं कि जो बिल्डिंग है उसमें किस तरीके से आग लगी थी और उसके बाद ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इसमें आप देखिए कि सारा जो ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्डिंग पूरी जली हुई है। यहाँ पर जितने लोग थे करीब 37 से 38 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 20 के आसपास लोगों की जो है वो जान चली गई है। तो एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हुआ है। फायर ब्रिगेड जो है सुबह से यहाँ पर लगी हुई थी, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए थे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किया गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर जिस बिल्डिंग में यहाँ पर आदेश सिर्फ 5 से 6 कमरे देने के लिए था, यहाँ पर अवेलेबिलिटी सिर्फ 5 से 6 कमरों की थी, वहां 25 से 26 कमरे आखिर क्यों बना दिए गए थे, ये सवाल उठता है। और इसको लेकर के जैसा कि हमने यहाँ की जो स्थानीय विधायक है उनसे बातचीत किया, उन्होंने बताया कि डीएम और एसपी इस पूरे इलाके को लेकर के जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक ये बहुत बड़ी घटना इस दिल्ली के इलाके में हो गई है, जहां से कुछ ही दूरी पर बड़ा हॉस्पिटल है, एलडीको का भी यहां से कुछ ही दूरी पर ऑफिस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से लोग यहां पर रुकते थे और खास तरीके से सवाल जो उठता है बेसमेंट का, यहां पर बेसमेंट में जिस तरीके से ताला लगा हुआ था उस बात को लेकर के सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जब नीचे लोग रह रहे थे तो आखिर
2: अपने और डिटेल्स आ रही है। प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा शेयर फॉर द किन ऑफ द डिसीज, दैट इज द लेटेस्ट दैट हैज कम इन दिस। रिमेंबर एज द डेथ टोल करंटली स्टैंड्स एट 20। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैज एक्सप्रेस्ड कंडोलेंसेस फॉर दोज हू लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर फैमिलीज एज दे हैज अनाउंस्ड 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा शेयर फॉर द किन ऑफ द डिसीज। जितेंद्र, आपके पास वापस आना चाहूंगी। Given the fact that everybody is expressing condolences, but accountability that needs to be sought. Who is responsible for this incident? Abhi haal hi mein Mehrauli mein aag lagi thi aur ab Malviya Nagar mein aag lagi hai, aur kis tarah se ye violations hai aur kyun inhe check nahi kiya ja raha hai?
3: बिल्कुल, इसको लेकर के अकाउंटेबिलिटी जरूर तय होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आग लगी है उसके बाद इस होटल में आग लगना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग रुके हुए थे। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर जो सिचुएशन इस वक्त है उसके हिसाब से पुलिस इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से ये रास्ता जो है आगे की तरफ वाला रास्ता, ये रास्ता थोड़ा सा पतला है, लेकिन ये जो सामने का रास्ता है वो मुख्य सड़क से जुड़ता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ये सामने की जो दुकान है वो सामने की दुकान जो आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर कॉटन के गद्दे रखे हुए थे और इस कॉटन के गद्दे का इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था, और स्थानीय लोगों ने बहुत सारे लोगों को ऊपर से जो लोग यहाँ से कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ऊपर का सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है यहाँ से लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे, तो उनको इन गद्दों में जो नीचे की तरफ आ रहे थे उनको बचाया गया। तो इस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल रही, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस इलाके में जहाँ पर जरूरत है सेफ्टी नॉर्म्स की, वहां पर आखिर किस तरीके से ये घटना हुई और इतना बड़ा करीब 37 से 38 लोग लोग यहां पर मौजूद थे जिनको रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 20 लोग के मारे जाने की खबर इस वक्त आ रही है। ये आखिर कैसे हुआ, इसको लेकर के सवाल जरूर खड़े होते हैं, और यहां का जो लोकल प्रशासन है क्या उन्होंने नजरअंदाज किया इन तमाम चीजों को लेकर के, इसको जरूर देखना होगा। हालांकि जो यहां के स्थानीय विधायक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि जो यहाँ के डीएम हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ के डीसीपी हैं, वो लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं और कार्रवाई जो लोग संलिप्त हैं इसमें उनके खिलाफ जरूर होगी। जी
2: जी बिल्कुल जितेंद्र, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस एंटायर एरिया को हमें दिखाइए, यहाँ पर कितने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं, किस तरह से ये सभी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो अगर एक को किसी तरह का ऐसा थ्रेट होता है तो साथ ही के स्ट्रक्चर्स भी बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, और खासकर जब अब दिल्ली सरकार कह रही है कि वो इस सब में देखेगी एंड वो जांच कर रही है इसकी, क्या दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी इंस्पेक्ट किया जाएगा, कहां पर इस तरह के वायलेशंस हैं?
3: जी बिल्कुल, आपको तस्वीर यहाँ की दिखाते हैं कि किस तरीके का ये पूरा एरिया है। दरअसल जो मेन चौड़ी सड़क है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ से आगे की तरफ पूरा रास्ता जाता है। दूसरा आपको यहाँ पर दिखा दें कि जो सामने की तरफ ये जो होटल है, ये जहाँ पर आग लगी उसके बगल में भी दूसरी माइक्सा जो है वो होटल है, जो कि इसमें रूम अवेलेबिलिटी की बात इसमें कही जा रही है, इसमें भी नीचे की तरफ आग लगी है और इसको भी इस वक्त बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से आपको अपने दाहिनी तरफ भी दिखाना चाहेंगे, लेमन ग्रीन इन दूसरी यहां पर होटल है जहां पर रूम्स अवेलेबल हैं, इस तरीके की जानकारी मिलती है। तो एक तंग इलाका है और यहां पर इस तरीके से रूम जो है अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं। लोगों को क्या इजाजत दी गई है कि जो उनके घर हैं या फिर छोटी जगहें हैं वहां पर रूम बना करके वो लोग उसको किराए पर उठा सकते हैं, इस तरीके के सवाल जरूर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में जो मेन लोकेशन है, यहां से टूरिस्ट प्लेस कुछ है, कुतुब मीनार कुछ ही दूरी पर है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि मैक्स हॉस्पिटल है जिसमें लोग विदेशों से भी इलाज कराने के लिए यहां पर आते हैं, वो लोग आकर के यहां पर रुकते हैं। तो क्या सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, जो नियमों का पालन यहां पर नहीं किया गया है, इस तरीके के सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि अभी एक और एम्बुलेंस यहां पर आई हुई है, ऊपर के जो होटल के जो इलाके हैं उसको पूरी तरीके से इस वक्त छानबीन किया जा रहा है कि कोई वहां पर फंसा हुआ या बचा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही। तो इस तरीके का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में और जो होटल जिसमें आग लगी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कमरों की इजाजत थी कि वो उस पर उसको उठा सकते हैं किराए पर, लेकिन 25 से 26 कमरे वहां पर बने हुए थे। और एक सबसे बड़ी बात यहां पर सामने निकल करके आ रही कि बेसमेंट जहां पर लोग रुके हुए थे, जहां पर उनके ठहरने का स्थान था, वहां पर भी ताला लगा हुआ था। जब फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची तो उन लोगों ने उस पूरे इलाके को कटर के जरिए ताला काटा और उसके बाद जो है उन्होंने उस चैनल को खोला, तब लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। तो एक ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे इलाके में जो होटल अवेलेबिलिटी की बात कही जा रही है उसमें रूम्स इतनी संख्या में क्यों बनाए गए, क्या इलीगल स्ट्रक्चर था, इन तमाम चीजों को यहां का जो लोकल प्रशासन है उसको देखना होगा।
2: जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी आ रही है, इनफैक्ट द डेथ टोल दैट हैज नाउ इंक्रीज्ड टू 21, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, 21 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस फायर, दैट सीम्स लाइक अ क्लियर मैन मेड ट्रेजेडी, समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, शियर नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन दोज हु वर रनिंग दिस बेड एंड ब्रेकफास्ट फैसिलिटी इन मालवीय नगर, वेयर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लाइसेंस इट वॉज क्लियरली अलाउड एट अ कैपेसिटी ऑफ 6 रूम्स टू बी फंक्शनिंग, बट 25 रूम्स दैट वर फंक्शनिंग आउट ऑफ दिस facility and that caused such chaos when the fire broke out. जितेंद्र आपके पास वापस आना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 4 दिन में 3 बड़े इंसिडेंट्स जो कि रिपोर्ट किए गए हैं दिल्ली में, दिल्ली के मेहरौली इलाके में जहां 5 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, वहां आग लगी थी, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में 2 दिन पहले जहां पर 4 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, और आज दिल्ली के मालवीय नगर में फिर से ऐसा हादसा हुआ है, 21 लोगों की जाने जा चुकी है, क्यों इसे एक वार्निंग साइन की तरह नहीं लिया जा रहा है?
3: और देखिए दिल्ली के प्रशासन को इसको पूरी तरीके से वार्निंग साइन के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त आग लग रही है और लोग हताहत हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी घटना मालवीय नगर में हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में आग लगने के बाद होटल का सिर्फ ही एक रास्ता अंदर जाने का रास्ता है और एग्जिट का किसी भी तरीके से रास्ता नहीं बनाया गया है। ऐसे में यहाँ पर जब ये पूरी आग की घटना हुई उसके बाद जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालना काफी मुश्किल हो गया था। हालांकि स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनको निकाला जाए, लेकिन जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उन्होंने नीचे से जो अंदर इन करने का रास्ता है उसको पूरी तरीके से आग जहां लगी हुई थी उसको बुझाया और बुझाने के बाद फिर पूरे इलाके को उनके द्वारा खाली कराया गया। लेकिन तब तक जो ऊपर की तरफ लोग पहुंच चुके थे वहां जो नीचे से आग लगी थी वो पूरी तरीके से धुएं से भरी हुई थी और उस वजह से दम घुटने की वजह से इतने लोग हताहत हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है रूम अवेलेबिलिटी सिर्फ जो है जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें 5 से 6 रूम देने की इजाजत उनको दी गई थी, लेकिन 25 जो कमरे हैं वो उनके द्वारा बना लिए गए। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया इस बात को लेकर के सवाल जरूर खड़ा हो रहा है।
2: जी जितेंद्र, फिलहाल आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। दैट्स द लेटेस्ट कमिंग इन फ्रॉम दिस वेरी स्पॉट वेयर द फायर ब्रोक आउट। मोर देन 4 आवर्स दैट द रेस्क्यू ऑपरेशंस हैव बीन अंडरवे व्हाइल मेनी हैव बीन इवैक्यूएटेड, बट अनफॉर्चूनेटली द डेथ टोल दैट हैज नाउ रिजन टू 21, मोर देन 35 हु आर ग्रीवियसली injured in nearby hospitals including AIIMS and Max who are receiving treatment. We have to sip into a very short commercial break at the moment, but we continue to get you the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: एडूकेटिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे CBSE हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई।

0: man lives lost in the Delhi fire that occurred at about 8:30 this morning at Malviya Nagar and was reported around 8:50 when 10 fire tenders rushed to the spot. Over 4 hours that the rescue operations have been underway. Over 35 people who are still battling for their lives. Let me take this to my colleague Seha Mordani, who's on the ground getting us the very latest of the rescue operations that are underway. And Seha, while we see heavy police deployment there, but the many questions being asked of the violations that led to this disaster.
1: Yes, Rishal, many violations, and that is what has come to the surface right now. We are at the spot where this accident has taken place this morning, leading to the death of 21 people. The fear is that the toll could be higher, given that there have been several lapses. And right now, we are, in fact, just a little ahead of this very building where this accident took place, where the fire broke out, killing 21 people. The big concerns here, this was actually an Airbnb. It had the permission to function as an Airbnb, but a restaurant at the basement. Permission given for 6 rooms, but 25 were functioning. So some serious answering to do as far as the authorities are also concerned. There is absolutely no information about the whereabouts of the owner. Particular Airbnb, it had the license for the same. Right now at this site, the police of course is trying to do their work. The fear, like I said at the outset, that there could be a concern regarding the death toll increasing even further. Now we do have some news just coming in at this point in time, and this has got to do with the information that Max Hospital is sharing with us. Before I get in more details, a look at the story we are breaking at this hour. The cylinder blast incident has taken place, is what is being said. Now, 39 patients were received at the emergency department of the Max Hospital, Saket Complex, upon arrival. All patients underwent clinical assessment and were managed by multidisciplinary teams, is what we know at this point in time. That's the story we are breaking at this emergency response. Activated, all protocol followed. Remember, many of these patients were sleeping when the fire broke out. So even if the bodies haven't been charred, what they've died really is because of the smoke that filled up in the room, and this is a big concern. Of the 39 patients, 18 were brought dead, 15 are in ICU. So the condition of the patients who are brought to the hospital continues to be very serious. 8 patients on ventilator and in critical condition, 5 with minor injuries treated, discharged following primary medical care, is what Max Hospital has said. One patient shifted to Safdarjung Hospital due to excessive burns. Remember, Delhi Safdarjung Hospital has got a burn injury ward which specializes in this, and that's the reason why the patient has been shifted there. Local and foreign nationals. So the fact is that not too far away from where this incident happened, where the fire broke out, here is Delhi's Max Hospital. And at the Max Hospital, there are patients who get treated. Now, where do the relatives of these patients go? Many foreign nationals come to India and to prominent places like Delhi, the national capital, which gives out these medical services. India, we know, is a medical tourism destination. So these patients come to India, receive care. Their loved ones, their kin, their caregivers were, in fact, staying here, were living here. And that's the reason why so many foreign nationals were there. I'm going to go straight across to my colleague Shivani with the very latest on that story. Shivani has been here. Shivani, foreign nationals have died in this horrific fire. We do know that they were here because they were the caregivers of their loved ones, recuperating, getting medical treatment at the Max Hospital, which is just around the corner.
2: Right, Sneha, see, what we are learning, that 39 people were taken to Max Hospital after what the Max Hospital says, that as per them, it was a cylinder blast. 39 people were taken, out of which 18 were brought dead.
1: Yes.
2: 15 are still struggling in the ICU, and one was shifted to the Safdarjung Hospital facility. But the bigger question is that because the Max Hospital is close by, there are many people who stay in this area. There are people who are the caregivers to the people who are taking treatment, who are under treatment in Max Hospital, and not only from India, but from many countries, these people have been living here, taking treatment. treatment out here. But now what the Max Hospital statement tells us, that this was a cylinder blast. We still have to wait for the investigations to move ahead, Sneha. But 39 people were taken to Max and 18 were brought dead. So that's what the update is right now, while the rescue operations still continue in this whole area.
1: Devita Shivani, coming back to you. Amit Bhardwaj, also from Ground Zero, getting in more details on that front. Amit, the fear and the concerns here are that the death toll could even go up even further. We're at the very spot where this is happening. I do see a team of medical experts who've gone into where the fire really broke out. We have a team of the Delhi police here, also fire services. Officers also continue to be here at this point in time. Are they expecting more bodies to be brought out? What are you learning at this point in time, Amit?
3: Sneha, I'm standing at Max Saket, the point where which became the immediate medical care center for the victims who sustained injuries, and many of them died when that, as per the hospital statement, was a cylinder blast. So unfortunate to say, at this point in time where I'm standing, the mortuary is not far off from here, and 18 people are dead. Those dead bodies are inside the mortuary in Saket Hospital. 15 of them are in the ICU at Max Saket. You know, the doctor teams, the expert teams are trying their best to ensure that best of medical care is provided to these victims. But at this point in time, we can certainly confirm our viewers. I'm standing at Max Saket, and 18 people who were brought here, they were declared brought dead. The dead bodies are in the mortuary, is in the mortuary right now. Possibly the hospital and authorities would be also trying to reach out to their family members to inform them. In this case, it could be further difficult because, you know, these are foreign nationals who were living in that hotel or bread and breakfast establishment in Hosrani of Malviya Nagar. So all that process must be taken forward by the different agencies. But as far as the 15 others injured in this, you know, unfortunate incident that happened is... 15 of them are in ICU getting the treatment, best possible treatment that could be given. As you were rightly pointing out, we know in the national capital there are centers such as Malviya Nagar, Hosrani, Hochkhas, where you have a prominent hospital, Max Saket. In Apollo, Jasola area is again a center where you have a lot of foreign nationals coming to India, to Delhi, to get treatment. So we do not know about the victims in this case as to, you know, whether they were here for treatment, to get their family members treated at the medical center establishments in Delhi.
4: But 6 kamron ki ijazat thi total, lekin banaye gaye the 25. Agar aap yahan dekhenge, ab yahan par aaiye ki ground floor par bhi 3 kamron ki ijazat hai. Yahan par agar aap dekhenge to ek room hai, yahan pe aapko nazar aayega ye 102, dusra kamra number nazar aayega aur ये एक तीसरा कमरा आपको यहाँ पर नजर आएगा. इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर है. यहाँ पर आपको आपने देखा कि 3 कमरे वहाँ हैं और 4 और ये 5, 105, यानी कि इस फ्लोर पर भी 5 कमरे, जबकि इजाजत जो है वो 3 कमरों की है. इसके अलावा इससे ऊपर भी चलेंगे, 5 कमरे यहाँ पर, 6 कमरों की इजाजत है, 5 कमरे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर, 3 कमरे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर. अब इसके बाद इससे ऊपर आएंगे तो यहां पर भी आपको रूम नंबर 201, 202, 203 में अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं बकायदा कि इस सेकंड फ्लोर पर भी तकरीबन जो इजाजत है 3 कमरों की, वहां पर भी इस तरीके से 5-5 कमरे जो है वो बनाए गए हैं, 204, 205. अब आप देखिए कि अगर कोई फायर का इंसिडेंट हो जाए, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ओपन वायर आपको यहाँ पर नजर आएगी, अगर कहीं आग लग जाए तो ये जो रूम है इसके बाहर बैल्कनी होगी, उस बैल्कनी से भी आप बाहर जो है वो नहीं निकल सकते. ये रूम भी पूरी तरीके से लॉक है. किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं, उनके लिए किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम है, इसको कौन देखेगा, किसकी जिम्मेदारी है, किसी को नहीं पता. अब इसके बाद इसके ऊपर फ्लोर पे जाते हैं. इस फ्लोर पर भी आपको इतने ही कमरे जो हैं वो नजर आएंगे. 5 कमरे यहाँ पर हैं, इजाजत सिर्फ 6 कमरों की है। यहाँ पेंट्री जो है वो बनाई गई है और अभी आप देखेंगे एक पर्सन है वो यहाँ पर गेस्ट जो है वो रह रहे हैं। उसके पीछे विंडो है और आप देखिए कि अगर कोई हादसा इस पूरी बिल्डिंग में हो जाए तो किसी प्रकार के फायर के कहीं से भी कोई इंतजाम जो है वो यहाँ पर नहीं किए गए हैं। ऐसे में जब हादसा होता है तो लोगों की जान जाती है, तो लोगों की जान जिसकी वजह से जाती है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के इंतजाम जो है वो यहाँ पर होटल्स में जो है वो किए गए हैं। इजाजत 6 कमरों की, बनाए गए हर फ्लोर पे 5-5 कमरे और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि सुरक्षा से किस तरीके से जो आम लोग हैं उनकी खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। हर फ्लोर पर 5-5 कमरे हैं, इजाजत जो है वो सिर्फ 6 कमरों की है।
1: Alright, so more news coming in as far as the lapses of this particular Airbnb and the restaurant here is concerned. We've told you about that the fact that the permissions were taken for granted and that what was permitted was 6 rooms. Malviya Nagar Hotel was permitted 6 rooms. Remember, this was an Airbnb. However, the Delhi Hotel ran 18 rooms and India Today has now accessed the government license order, which in fact clearly shows that there were violations on that front, and the permission was clearly given for 6 rooms, but this particular hotel ran 18 rooms, and that's where the problem really has started, because this became a death trap really for the people who were living here. The people who were staying here became sitting ducks. Clearly, if a permission has been given only for 6 rooms, then why were 18 rooms allowed? And how is it that so many people were living here? Since when were these violations being done? The government of Delhi has said that there is going to be a detailed investigation this entire matter. But the fact is that 21 people have lost their lives, and there are many who are battling for their lives in Delhi's Max Hospital. So there's a big question mark on the lapses that have been reported as far as this Airbnb is concerned, the restaurant functioning is concerned. A cylinder blast is what Max Hospital has said. But of course, this is something that's going to be investigated threadbare on what led to this horrific accident that has taken the lives of so many people. To take our viewers through these images, a team of the Delhi police continues to be here. Right at the site, we have a medical team as well, looking at what could have possibly started the fire. Bodies that have been charred beyond recognition, and many people who died because they simply couldn't breathe. It became a toxic chamber, a death chamber of sorts, with the doors completely shut, and they didn't know what happened. Many of the victims, what the authorities are telling us is that were asleep when the fire broke out, and they were caught completely unawares early this morning when the fire started at this particular Airbnb. It started at the basement where the restaurant was and then spread further up, as you can see in this multi-story structure where several floors. If you can take a look at these images that show the extent of the damage here. Well, this certainly is a crowded sort of a lane, and the fire ambulances came in and pulled out the patients. They pulled out those people who had been hurt grievously, were rushed to Delhi's Max Hospital. One patient has got severe burn injuries and has been taken to Delhi's Safdarjung Hospital, where these are the details we can share with our viewers at this point in time. A team of the NDRF also here assessing the situation and looking at what could have possibly gone wrong, even as we continue to stay completely barricaded out of this area. But this tragedy just speaking volumes of criminal apathy, criminal callousness. The people who were staying here were simply sitting ducks. This was bound to happen, an accident of this sort, with exit points not there absent, and investigations will throw up more information on the further lapses that certainly this Airbnb and this restaurant are guilty of. We don't know yet anything about the owner, but you know, I just happened to look at the Instagram handle and at the website of this particular Airbnb, where it is publicizing itself as a place which offers care and comfort to those people who have their loved ones admitted to Delhi's Max Hospital, which is just around the corner. So they were the loved ones. The kin of the patients were recuperating and getting all kinds of treatment in the Max Hospital here. And hence, so many foreign nationals. It's offered attractive rates and asking people to come and sign in and stay there. That's a regular publicity that this particular Airbnb did. Little did the 21 people who've lost their lives in this horrific tragedy realize that this would perhaps be their last stay, and that this, in fact, would kill the stay in this particular Airbnb would kill them. All right, so the big question here, we don't know just yet on who the owner of this place is, but who allowed the hotel to run so many rooms when the permission was given for six of them, who was actually running roughly around 25 rooms is what is being said. Who allowed the breach of license? Why was this not noted earlier in regular checks that is meant to be done, especially in places which is housing tourists? What about fire safety norms and the violations therein? Who allowed the breach of license and fire safety? Why was the illegal basement not shut down? Permissions not given to have rooms at the basement, but they were running. And this is not something that has happened once. It's happened in the past as well. Also, did civic fire licensing bodies ignore the lapses? Because this place had been functioning for a while now. How is that all of this went unnoticed? Were fire inspections conducted ever? That's a big question here. NOC given. But did you even come back and check if the norms were getting violated? Could have timely action on the part of the authorities to crack down on them, to prevent them from having 25 rooms in spite of just getting the permission for six. Could have that been avoided? More reactions coming in. Let's take a look.
5: जो 21 मरने वाले हैं उनमें ज्यादातर विदेशी हैं, साथ ही साथ जो घायल हैं उनमें भी ज्यादातर विदेशी हैं। मालिक को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रेड कर रही है, साथ ही साथ इसको एनओसी थी या नहीं थी इसकी भी जानकारी, लेकिन मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी। अगर सामने की तरफ नीचे देखेंगे तो आपको गद्दा दिखाई देगा, जूम करके रितेश मिश्रा आपको दिखा रहे हैं गद्दा। तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और जब इस इमारत से लोग नीचे की तरफ कूद रहे थे, स्थानीय लोगों ने ये मोटा गद्दा नीचे की तरफ रखा जिससे जो होटल से लोग अगर कूदे तो उनको ज्यादा चोट ना आए। तो पहली तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं और जो कांच है वो देखिए कितना टूटा हुआ है, क्योंकि जो ये पूरा होटल है, जरा तस्वीर आप दिखाइए नीचे से ऊपर तक, ये जो पूरा होटल है ये होटल है, इसी होटल के नीचे फ्लोर पर आग लगी थी और धीरे धीरे जो आग है वो फैलते हुए पूरा जो होटल है उसमें आप देख रहे हैं कालिक लगी हुई है। और वो जो खिड़की दिखाई रितेश मिश्रा, ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है, तोड़ते हुए की भी तस्वीरें हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है पूरी तरह से और इसके अंदर से लोगों को निकाला गया है।
6: मैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हूं और एक बार सबसे पहले यहां पर दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये वही बिल्डिंग है जहां पर सुबह करीब 8:15 बजे के आसपास आग लगी थी और उसके बाद फायर टेंडर्स को जो है यहां पर बुलाया गया, 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर पहुंची थी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती से भी हमारी अब से थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने बताया कि 27 से 28 लोगों को यहां से निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटे हुए हैं। नीचे जो बेसमेंट है वहां से कई लोगों को निकाला गया है, अभी भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, आग को जो है बुझा लिया गया है फायर ब्रिगेड के द्वारा। अब कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उनको निकाला जाए, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है लोकल्स जो यहां पर मौजूद है उनके मुताबिक जो यहां जब आग लगी उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो निकल नहीं पा रहे थे तो आसपास गद्दे डाल करके उनको ऊपर से जो लोग कूद रहे थे उनको बचाया गया है। तो इस तरीके की कोशिश लगातार यहां पर की गई है, लेकिन ये जो सिचुएशन है यहां पर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के लोग तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है यहां पर गाड़ी और देखिए अभी इसका डिटेल जो है वो निकाला जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट में नीचे रहने का भी यहां पर इंतजाम था, क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉरेनर्स भी हैं, उनकी जानकारी मिल रही है वो इसमें फंसे हुए थे, वो वैसे फॉरेनर्स जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, उन लोगों को जो है यहां पर रूम दिए गए थे जिसमें वो फंस गए थे, जिसके चलते ये बड़ा जो है यहां पर हादसा हुआ है, और ये आग लगने के बाद उसमें से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाए जिनको कि काफी नुकसान हुआ है। और आप देखिए यहाँ तस्वीरों में कि जो नीचे का बेसमेंट है उसका दरवाजा भी तोड़ा गया है। वो सामने की दुकान जो आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर कॉटन के गद्दे रखे हुए थे और इस कॉटन के गद्दे का इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था, और स्थानीय लोगों ने बहुत सारे लोगों को ऊपर से जो लोग यहाँ से कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ऊपर का सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है यहाँ से लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे, तो उनको इन गद्दों में जो नीचे की तरफ आ रहे थे उनको बचाया गया। तो इस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल रही
7: है। आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअल्टी इसमें काफी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है, और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया।
8: मैं जब दुकान के लिए जा रहा था यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई, आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए, गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेकर वो तीसरी मंजिल पर से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जब भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका, फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे, फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया मामला।
6: ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का, इस चैनल को काटा गया है, क्या जानकारी मिल रही, क्या ताला बंद था, क्या
9: ये लॉक था, लगा हुआ था, वो फायर वाले आए थे उन्होंने कैंची दी थी उससे काटा है।
6: जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों, ताला क्यों लगा,
9: ये इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बंद था, फिर इन्होंने चैनल से काटा, उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया, फिर अंदर घुसे
10: फायर फाइटिंग के पास,
9: उससे काटा, फिर हम अंदर घुसे,
10: लोग अंदर घुसे, 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी, और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए, तो लोगों ने नीचे जम भी किया है, जो सेफ है और भी सेफ लोगों को निकाले, और कुछ लोग कैजुअल्टीज हैं।
11: थर्ड फ्लोर से तीन नाइजीरियन, चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के, जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है,
12: अवैध बिल्डिंग जांच होगी,
13: ऑलरेडी उसके लिए कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं, और जो दोषी जी गिरफ्तार किया जाएगा, मालिक को जिसने लापरवाही की है, सब पे कार्रवाई हो रही है, आप थोड़ा सब्र रखिए।
6: लेकिन जो जानकारी मिल रही कि इसमें बेसमेंट की तरफ जो चैनल था उसमें ताला लगा हुआ था, और उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, और उसको जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो उसको काट करके उस चैनल को खोला गया।
14: निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये जो होटल बना हुआ है, इस पर BNB का कोई लाइसेंस था इसके पास, और उसके कारण से यहाँ जो सामने मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, और उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। ये 9:51 की घटना है, और उसी के बाद से हम सब लोग 8:51 की घटना है, उसी के बाद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय नागरिकों ने और फायर ब्रिगेड ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने, और खासकर इनका जो बेसमेंट का एक रास्ता,
6: सर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं थी, चैनल बंद था, उसके बावजूद भी इतने लोग यहाँ पर रह रहे थे।
14: मेरा ये कहना है कि सवाल उठाना आपका काम है और सवाल आप उठाएंगे ही, मेरा काम पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो है राहत के कार्य, मेरी प्रायोरिटी है पहले लोगों को बचाना, मेरी प्रायोरिटी है लोगों को यहाँ से निकालना, और वही काम हम कर रहे हैं। अब ये सवाल जवाब जांच के विषय हैं, वास्तव में जहां जो जिसने जो कमी की होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से रूथलेसली करनी चाहिए, और इसमें किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी कोई गलत तरीके से कार्य किया है, हम किसी भी गलत चीज के साथ नहीं, लेकिन पहले ही मेरी प्राथमिकता यहाँ पर बचाव का कार्य, राहत का कार्य, और अपना जो काम करना है वो काम हम कर रहे हैं।
15: सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है, शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा, उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो यहाँ इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं, और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग ली, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं।
1: So we have more news coming in at this point in time as far as this horrific tragedy from Delhi is concerned. Let's tell you about the death toll in Delhi hotel fire. It now stands at 21, but what's being estimated is that it could mount. Given that 8 burn victims are on ventilator support at Delhi's Max Hospital is what a statement from the hospital says at this point in time. Also, many victims had burn injuries and fractures, remember, to escape the fire, unfortunately. And those were horrific, tragic scenes that unfolded. I'm going to ask Pavan to invite you a glimpse of what was there. There were these mattresses from where the people living here jumped, and the people in this vicinity, the locals here, tried to put in a mattress to, in a way, cushion in the people who were jumping from two stories to save their lives, to escape the fire. This is what happened. And that's the reason why many patients have fractures as well. 39 patients at the emergency department of the Max Hospital is what we are learning. Shivani is getting in more on that story. Shivani, many patients have got fractures as well. We were just telling our viewers about how just so many of them actually had to jump out of the building to save their lives. What the locals here could do at best was just give them these gaddas, these mattresses to cushion in, right?
2: Right. We can see these mattresses that are here, that they are lying here, Sneha. They were provided with the people who had their shops here. When they heard people screaming from inside the building, they saw few people coming out from this terrace area. We can just show this terrace, that happens to be the only place which had some ventilation. All the other windows were closed, Sneha. Now what the initial inquiry is also saying, that there were several points that were being flouted, the rules that were being flouted, the basement that was closed, there was a grill that it was locked. People were staying inside the
1: bridge. That's what we hear, that actually some of the fire authorities, when they tried to see what's going on, if there are people stuck there, they actually found that the door was locked and were wondering why the door would be locked and people would be inside.
2: The door was locked, the grill was locked, Sneha, and the people were stuck in the basement. Around 6 to 7 people were stuck. The grill had to be cut, which was not an easy task to do when the fire was on. And you can see these mattresses lying out here. People were trying to jump out of this whole building. They were being helped by the locals out there. But the initial inquiry, the initial probe is pointing...
5: ये पूरा होटल रितेश मिश्रा ऊपर से नीचे तक आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत फासले पर इस होटल के हम हैं और जो इस बिल्डिंग की मालिक हैं, जहां हम खड़े हैं, अंजुम जी, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। और बड़ी बात यह है कि एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था। अब सवाल है कि एंट्री एग्जिट गेट एक ही था तो फिर आखिर कैसे इसको एनओसी मिली? एनओसी मिल नहीं सकती। अब जरा ऊपर की तरफ टॉप एंगल से आप दिखाएंगे रितेश, ये फ्रंट गेट है पूरे होटल का जहां पर आग लगी थी, फ्लरिश होटल। और अब बैक साइड से दिखाएंगे, चारों तरफ की जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियां टूटी हुई। रितेश मिश्रा इधर मेरे करीब आई, आप इधर से यहां से दिखाइए, ये फ्रंट गेट देखिए, ये बैक देखिए। अंजुम जी इस पूरे अग्निकांड की सबसे बड़ी गवाह है। इनका घर भी इस आग की चपेट में आ सकता था, क्योंकि एस्टैब्लिश करिए रितेश जी, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, आज तक की टीम यहां पर खड़ी है। अंजुम जी इस बिल्डिंग की मालकिन है। और यहां से कितना फासला होगा ये देखिए इस होटल का। अंजुम जी सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की, अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
12: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं, देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया, यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
5: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
12: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
5: दिखाइए फोर्थ फ्लोर
12: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए ये देखिए ये खिड़की देखिए खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे, ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
5: देखिए आज तक हम आपको फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं, समझने की जरूरत है कि हम बेहद इस होटल से कितने करीब है। अंजुम जी है ये
12: यहाँ पे पहले खादी शिल्प होता था, उसके बाद यहाँ पे आलू वालिया कंस्ट्रक्शन किसी ने ये बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद ये इन्होंने किसी बजाज
5: एक बात बताइए एनओसी मिल सकती इस होटल को?
12: इस होटल को एनओसी इसलिए नहीं मिल सकती, इन्होंने 5-6 कमरे एक फ्लोर पे बनाए तो भी ठीक है, उन्होंने 25-25 कमरे इसमें बना रखे हैं, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट इन्होंने नहीं बताया, एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है। हाँ। लेकिन मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा, ट्विटर पे देखा कि यहाँ पे देखिए मिकासा है, इसके बगल में एक होटल है, इसके बगल में एक लेमन ग्रीन है, तो जो सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें दिखाई जा रही है।
5: देखिए अंजुम जी यहाँ पे खड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने की तरफ ये होटल है, बेहद करीब होटल।
12: सोशल मीडिया पे जितनी खबरें आई हैं सारी गलत आई हैं, ये उस होटल को दिखाया गया है लेमन ग्रीन को, बट लेमन ग्रीन यहाँ से थर्ड होटल है, ये फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस इन
5: इस होटल का नाम फ्लोरेंस इन
12: है, ना कि लेमन ग्रीन।
5: अच्छा अंदर क्या विदेशी थे? कांच टूटे
12: बहुत ज्यादा, यहाँ पे जितने भी होटल्स रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर फॉरेनर्स लोग होते हैं, जैसे कि नाइजीरियन हो गए, अफगानी हो गए, या फिर सोमालिया के लोग हुए, या श्रीलंकन हो गए, वो सारे
5: जो सामने, जब आप चूंकि आपका घर भी चपेट में आ जाता आप लोग,
12: क्योंकि मेरे फादर तो चल ही नहीं सकते, ही इज बेड रिडन, हमें समझ नहीं आ रहा था हम उनको कैसे लेके जाए,
5: तो यहाँ क्या अफरा तफरी मच गई थी, खिड़कियाँ कैसे टूटी
12: हुई थे, ऊपर से कूद रहे थे। हाँ
5: तो ये देखिए, और आपके पास वीडियो तस्वीरें भी हैं?
12: हाँ मेरे पास सारी तस्वीरें, मैं आपको दूंगी।
5: देखिए अभी कुछ देर बाद हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पहले नीचे की तरफ हम दिखाते हैं जहाँ तमाम मीडिया पुलिसकर्मी अधिकारी खड़े हैं। ये नीचे की तस्वीर है जो अब तक आपने देखी होगी, और आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। पहले आप नीचे की तरफ देखेंगे, एंट्री एग्जिट गेट इस होटल का एक है, पूरा राउंड करके हम दिखा रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। पहले दिखाइए रितेश मिश्रा, ये फ्रंट गेट है, अब यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट कहाँ हो सकता है आप अंदाजा लग सकते हैं,
12: नीचे वाला है
5: एंट्री एग्जिट नीचे,
12: यही सेम गेट है।
5: अब देखिए अब दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो कोई एग्जिट गेट नहीं है,
12: आग भी इनके बेसमेंट में लगी है, बेसमेंट से शुरू हुई है, क्योंकि इनका ग्राउंड फ्लोर पे इनका ये इनका कैफेटेरिया था, केक एंड बाइट्स, एंड उसके बाद ये बेसमेंट में ये बनाते थे, कुछ करते थे, वहां से इतने लोगों को निकाला गया और बेसमेंट में आग लगी, जबकि बेसमेंट में तो आप खाना बनाने का काम कर ही नहीं सकते।
5: फिर हम आपको ये बता रहे हैं कि आज तक उस होटल के बेहद करीब खड़ा है, इस घर को भी चपेट में ये आग ले सकता था, और फ्रंट गेट ये है, ये होटल आपको फ्लोरेंस इन होटल दिखा रहे हैं रितेश मिश्रा, ये दिखाइए ये होटल है, एग्जिट एंट्री गेट ये है। अब अगर अदर साइड दिखाएंगे, एग्जिट एंट्री गेट नहीं है, खिड़की दिखाइए जरा रितेश मिश्रा, हर खिड़की टूटी हुई है। ज्यादातर विदेशी नागरिक थे, नाइजीरियन थे, साउथ अफ्रीका के, सोमालिया के, वो इस होटल में थे, और जो हमें जानकारी मिली, जो तस्वीर आपने देखी छत पर, ये छत दिखाइए जरा आप, छत पर
12: का आग बेसमेंट में लगी है,
5: छत के ऊपर भी लोग खड़े थे,
12: छत के ऊपर भी लोग जान में चाह गए, पर वो कैसे आएंगे, वो कूद के ही आ रहे थे, और यहाँ पे बेसमेंट इन्होंने इलीगल तरीके से बनाया है,
5: इलीगल तरीके
12: बेसमेंट से ही आग शुरू हुई है,
5: बेसमेंट से आग शुरू हुई है। सबसे बड़ी चश्मदीद इस हादसे की अंजुम जी आज तक पर मौजूद है, और वो पूरा खुलासा कर रही है। होटल की तस्वीरें हम आपको करीब से दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त होटल में दाखिल होना वो खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि होटल के अंदर तक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जरा आप वो दिखाइए, ये चौथा माला ये
12: हाँ जी
5: ये देखिए चौथा माला के अंदर की क्लोज जूम करके दिखाने की कोशिश करिए, किस तरह से जो खिड़की है उसको तोड़ा गया, ये देखिए इसको तोड़ा गया है, इसके अंदर से लोग कूदे हैं, उसके बाद नीचे की तरफ रितेशजी आइए, नीचे की तरफ आइए, इस खिड़की को भी तोड़ा गया है, इसके अंदर से लोग तोड़ करके नीचे आए, उसके बाद ठीक नीचे आइए, इस खिड़की को भी तोड़ा गया है, और वो तस्वीरें भी आज तक के पास है जब लोग इसके अंदर से कूदते चीखते चिल्लाते दिखाई दिए। हालत ये रही कि लोगों ने गद्दा बिछा दिया, वो गद्दा नीचे की तरफ रितेश हमने पहले भी दिखाया था, आपको दिखाएंगे।
12: बंदे जो गिरे वो गद्दे के ऊपर गिरे। दूसरा, ये जो लाइन सामने जा रही है, आप इसको फोकस कीजिए, इस लाइन को, ये लाइन फोकस कीजिए, ये वाली सामने
5: देखिए, ये सामने की तरफ गली है,
12: ये सारे होटल्स में कन्वर्टेड है, यहाँ पे सारे पर डे चार्ज करते हैं ये लोग, और इन्होंने कोई एनओसी नहीं है, कोई इसमें सेफ्टी सेफगार्ड्स नहीं है, कुछ
5: तो
12: ना।
5: अगर सरकार, दिल्ली सरकार सुन रही है, एमसीडी सुन रही है, तो सीधे ये स्थानीय नागरिक हैं, होटल से बेहद करीब हैं, आग में इनका घर भी जो चपेट में है वो आ सकता था। तो आज तक पर खुद जब अंजुम जी इस पूरे इलाके का खुलासा कर रही है, क्योंकि ये देखिए, ये घर है जहां इस वक्त हम खड़े हैं, सामने की तरफ ये होटल है, अंजुम जी का ये घर है, इनके घर में भी भगदड़ मच गई, और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा है, आपको दिखाई देगा। तो आप इस इलाके के बारे में बता रही थी, रितेश जी जरा ये दिखाइए आप, ये जो खिड़कियाँ क्यों टूटी हुई है, जरा एक्सप्लेन करिए।
12: ये खिड़कियाँ यहाँ पे, ये लोग यहाँ से गिर रहे थे,
5: यहाँ से गिर रहे थे
12: जान बचाने के लिए, क्योंकि एग्जिट नहीं था इनके पास कुछ भी।
5: अच्छा,
12: एग्जिट नहीं था, निकलने जाने का रास्ता एक था, इनकी जो सीढ़ियां थी वो पैक्ड थी, लोग कहां से निकले, लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना शुरू किया।
5: तो देखिए, ये पूरा खुलासा आज तक पर हम कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच करेगी, क्या एमसीडी आएगी, लेकिन ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन आज तक पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं कि ये होटल है, इस होटल के ठीक सटे छत पर आज तक की टीम खड़ी है। हमारे साथ इस हादसे की सबसे बड़ी चश्मदीद अंजुम जी मौजूद है, जो बता रही हैं।
16: हाँ जी, बताइए।
12: और ये किस पार्किंग से शुरू हुआ था, इन्होंने ये लोग कॉल भी कर रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले या पुलिस वाले कोई आया नहीं। अगर टाइम से अगर इनका एक्शन लिया जाता, कोई सुन लेता, यहाँ पे लोग आ जाते, तो इतने लोगों की कैजुअलिटी हम बचा सकते थे। तो इस वजह से ये
5: क्या मंजर रहा होगा उस वक्त, आप
12: बहुत ज्यादा हम खुद रो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे फादर बेड रिडन है, हम उनको उठा नहीं पा रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने फादर को कैसे लेके नीचे आऊं।
5: तो देखिए, ये चश्मदीद है अंजुम जी, सामने की तरफ फ्लोरिस होटल है, और छत जो है, छत के भी कई वीडियो है, उस छत पे लोग खड़े थे विदेशी, वहां से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे थे जो इस छत से कूदे हैं, इस वजह से उनकी जान चली गई, सफोकेशन की वजह से। और जरा हाँ, एक्सप्लेन करते हैं हम इस तस्वीर को, एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेन करिए। ये देखिए, होटल है, एग्जिट एंट्री गेट एक है। अब अगर हम दूसरा सिरा इस होटल का देखते हैं, तो यहाँ पर कोई एग्जिट एंट्री गेट नहीं है। रितेश जी मुझसे आइए और ये एस्टेब्लिश करिए। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है। अब जरा खिड़कियों को देखिए, खिड़कियों को एक्सप्लेन करिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है, और लापरवाही की वजह से 21 लोगों की जान चली गई, जिसमें
12: it can be more than 21 that I have counted myself।
5: तो ये देखिए, ये बता रही हैं कि और कैजुअल्टी हो सकती है, और 40 लोग घायल है इस मामले में, और इस वजह से ऑन द स्पॉट आज तक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब अंजुम जी और जो हम सामने देख पा रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अपने आप में सब कुछ बताती है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। होटल में एग्जिट एंट्री एक अगर एक ही है, तो फायर एनओसी नहीं दे सकता, नंबर एक। तो ऑन द स्पॉट ये क्लियर है। होटल में अगर आप देखिए, तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, बल्कि दूसरा एक बगल में होटल है, उसको भी अपनी चपेट में ले लिया। और जरा एस्टेब्लिश करिए इस पूरे इलाके को आप जरा सा, रितेश जी। हाँ देखिए, अगर एंट्री गेट की तरफ देखिए, फॉरेंसिक की टीम अंदर जा रही है, अभी अंदर जाते हुए फॉरेंसिक की टीम, ये एग्जिट एंट्री गेट दोनों है, जहां की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, और यहां से ये पूरा होटल है। कितने माले का होटल है मैडम?
12: 4 माले, और बेसमेंट भी है, ग्राउंड माला, ग्राउंड बेसमेंट एंड देन फोर।
5: तो जाहिर सी बात है, फिर तो इसको एनओसी किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। अच्छा, यहाँ किस तरह की, कितने होटल चल रहे हैं?
12: हजारों हैं यहाँ पे, हर गली में लोगों ने अपने घर को, अब यहाँ के लोग शिफ्ट हो गए कहीं और, हाँ। और उन्होंने अपनी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया होटल में, बिकॉज ऑफ मैक्स,
5: क्योंकि एनओसी वगैरह मिली भगत होती है, सबको कटिंग जाता है,
12: सब कुछ कटिंग जाता है, सब कुछ गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं होती, पुलिस को
17: कुछ पेशेंट सुनने अभी क्रिटिकल है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है सब। वो मेरे पास डिटेल्स अभी नहीं है, बट उसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे और अपने लोकल पेशेंट्स।
18: कितने लोग हैं जो ऊपर से कूदे
17: हैं? वो नंबर मेरे पास नहीं है, ये तो जो पेशेंट्स ने, जिनसे हम बात कर सके, जिन्होंने हिस्ट्री दी है, बहुत पेशेंट्स जो थे जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला, वो अनकॉन्शियस थे, कोई उनसे हिस्ट्री नहीं मिली है। बट जो पेशेंट्स जिनको ज्यादा सीवियर इंजरीज नहीं थी, जो वेंटिलेटर पर नहीं थे और जो कॉन्शियस थे, उनमें से काफी ने ये हिस्ट्री दी है कि हम थर्ड फ्लोर से जंप आ रहे हैं हमने, तो किसी का हार्ट टूटा हुआ था, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी के पेल्विक इंजरीज थी, तो वो बोनी इंजरीज थी, बट वो मोस्टली स्टेबलाइज कर लिए जाएंगे। जो
16: मेल कितने
17: जिनकी डेथ हुई है 18 पेशेंट्स की, वो बराबर नो नो थे, नो मेल्स और नो फीमेल्स।
16: सर, जो कॉज ऑफ डेथ है, प्राइमाफेसाइज, सफोकेशन, स्मोक, क्या लग रहा है?
17: एस्फिक्सिएशन। वो बेसिकली होता क्या है, बर्न से पहले, फायर पहुंचने से पहले स्मोक पहुंच जाता है, तो वो आदमी जब स्मोक इनहेल करता है, उसकी वजह से एक तो क्या होता है, बॉडी में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसी ऑक्सीजन कमी हो जाती है वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा, बिकॉज ये जब बर्न होता है तो पीवीसी, टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत होते हैं, प्लास्टिक, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेस आदमी इनहेल करता है, इससे भी इंजरी हो। तीसरा, जो ये जो फ्यूम्स होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर इंजरी हो जाती है लंग्स में। तो ये तीन मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे लंग्स में इमीडिएट इंजरी हो जाती है, और ऑक्सीजन कमी से आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, और इसमें वही टाइम क्रिटिकल होता है कि जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें उस वो पेशेंट्स को टाइमली मैनेज कर सकते हैं।
16: तो
17: मैं बता रहा हूँ, जो वेंटिलेटर पे है वो वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, तो वो क्रिटिकल हैं, 7-8 पेशेंट जो है, बट उस पर भी पूरी मेहनत चल रही है। बाकी जो वेंटिलेटर पे नहीं है, आईसीयू में है, वो स्टेबलाइज हो रहे
16: हैं।
17: मिक्स्ड है, वो नंबर मुझे अभी नहीं मालूम है, बट मैं बता रहा हूँ कि फॉरनर्स भी हैं, क्योंकि वो तो अब कई पेशेंट्स तो अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, तो अब वो एग्जैक्ट उनकी मैं नहीं कह पाऊंगा,
16: लेकिन
17: हाँ वो सारे, वो तो पुलिस जो है वो तो सारा मैनेज कर ही रही है, सारे मेडिकल लीगल केसेस है, तो स्टूडेंट्स तो नहीं है।
16: एज कितनी होगी सर? कुछ
17: एज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मतलब जितने मैंने देखे हैं वो आप लेके चले 20 साल से लेके 50-60 साल, इस पे सेम यही 20 से 40 से लेके 50, 30 से 50 की बीच में रेंज में है सर। हमारे यहाँ कोई नहीं लाएगा। नहीं देखिए, जो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बर्न का केस था जिसमें हमारी इनिशियल, ऐसा होता है कि इनिशियल असेसमेंट में कई बार आप एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते, वो थोड़ा जब स्किन स्कैल्डिंग होती है, तो एक पेशेंट था जो वेंटिलेटर पे था, जिसका मैं इनिशियल असेसमेंट में 25% के करीब बर्न इंजरी थी, और हम अपने हॉस्पिटल में 10% से ऊपर फिर स्टेबलाइज करके रेफर करते हैं, तो फिर वो हमने सफदरजंग पेशेंट जब इस पेशेंट को जब रेफर किया हमने, सफदरजंग ट्रांसफर हमने करवाया अपने, उसको वो पेशेंट वैसे स्टेबल था, बट बर्न ज्यादा थे, वेंटिलेटर पे था, इसलिए शिफ्ट हुआ। नहीं, एक दो थे जिनमें काफी सीवियर स्कैल्डिंग थी, बर्न्स थे काफी सीवियर, बट मेजोरिटी में लंग्स वाली प्रॉब्लम।
16: फायर पर्सन
17: नहीं, नॉट नोबडी ब्रॉट टू आर प्लेस। मैं वो बता रहा हूँ, वो माइनर बर्न्स है, लेस देन 10% को माइनर बर्न्स कहते हैं, तो उनमें सबकी ड्रेसिंग्स और स्किन का जो इशू था वो दैट वाज इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ जैसे यहाँ आए थे, तो बर्न इंजरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जो पेशेंट है वो सकम करेगा, लंग्स की प्रॉब्लम है मेनली।
18: सर, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं लगभग कितना टाइम लगेगा इनको रिकवर करने में?
17: ये तो देखिए, मैं इसका आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि ये लंग की इंजरी पे डिपेंड करता है, और ये खाली लंग की इंजरी नहीं है, उसके साथ इनको और भी इश्यूज है ना, कई लोग लंग इंजरी मतलब वो उन्होंने इनहेल किया उसके बाद वो कूद गए, तो उनको बोनी इंजरीज भी हैं, तो मल्टीपल इश्यूज हैं अब, और इफेक्ट जो है ये टॉक्सिक गैसेस का और टेम्परेचर का, थर्मल बर्न का, ये टाइम लेता है, तो ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा कि जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला है वो कल ही हम उस पर कुछ देख पाएंगे, उस पर समय लगेगा।
18: सर, लगभग कितने समय ये पेशेंट्स आने शुरू हुए थे आपके पास?
17: एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे ख्याल 9:15 to 9:30 के बीच में, मतलब 9:15 यहाँ से हम वो स्मोक देख पा रहे थे अक्रॉस द रोड, तो तब मैंने देखा फर्स्ट एम्बुलेंस जो आई वो मेरे 9:20 to 9:25 हो गया। वो पेशेंट मेल है।
16: सर, जो पेशेंट आइडेंटिफाई करें आप बता सकते हैं कि कुछ उसमें से जो भी है कौन सी कंट्री के हैं जो आपके पास आए हैं?
17: नहीं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं।
19: थैंक यू सर।
16: आउट ऑफ 39 लोग मरे उसमें क्या सारे ब्रॉड डेड ही थे?
17: सारे ब्रॉड डेड थे, सारे के सारे ब्रॉड डेड। थैंक यू सर। थैंक यू
18: सर। थैंक
20: यू सो मच। थैंक यू।
21: लेकिन अगर समय रहते
1: होरिफिक न्यूज this morning that Delhi woke up to the country, woke up to of this fire at Delhi's posh Malviya Nagar locality where we are at this point in time. Now to tell our viewers, yet another forensics team has just gone inside to assess a situation while this entire area continues to be barricaded. 21 people have lost their lives. The understanding or the sense really is that there could be more people who could succumb to this horrific accident that has taken place, but I wouldn't even want to call it an accident at this point in time, given that this is criminal negligence, just so many lapses, and there's really a sense of horrific sense of deja vu, because this isn't the first time this has happened in Delhi city. It's happened in the past as well in many other cities across the country, where negligence and license has been given for 6 rooms, but there are 18 rooms functioning out of the same premises, and that's where the problem really starts. The victims here were sitting ducks, is what we can say. A look at the defining images also of this horrific tragedy. There were just so many pictures coming in, heartbreaking images. Let's take you through visuals from the Malviya Nagar fire show. A massive fire engulfing a building in Delhi city. Delhi Minister Ashish Sood earlier reached the site to assess the situation and take stock of the fire incident at the BNB, Airbnb. Foreign guests staying at the hotel restaurant jumped to safety as the fire spread, and that's where the horrific image came in of two women who could be seen leaping one after the other, in fact, jumping from the building in a bid to save their lives. Locals rushed to help them, wrapping them in blankets. The wires around the hotel were also engulfed in flames, with electric sparks seen at the spot. As of now, the cause of the fire remains unknown. No official statement has been issued on what could have started this fire. Lapses, of course, have come to light. Reports suggest the hotel had a license for 6 rooms, but was operating 25 rooms. Dozens of guests were accommodated on the premises, including the basement, which is strictly against the norms. Bodies were taken to a nearby private hospital. This is Delhi's Max Hospital in Saket, not too far away from where we are. Several injured victims are undergoing treatment. Many remain in the ICU. Several others have sustained injuries. As of now, more than 20 people have lost their lives. Death toll could rise further. Fire brigade teams rushed to the spot, and officials worked to evacuate people from the affected area. The fire has now been extinguished, but the aftermath remains tragic. This wasn't just the last 5 days, and many of it could be attributed to the brutal summer heat. Of course, as far as the fire in Malviya Nagar is concerned, that is something that is going to be assessed. Well, on the 30th of May, earlier, just a few days ago, a building collapse happened in Delhi's Mehrauli that claimed 6 lives. A day later, on the 31st of May, a major fire broke out in Mukherjee Nagar, triggering panic in the area. No casualties, thankfully, were reported. Now, a devastating hotel fire in Malviya Nagar has left 21 people dead.
0: Sir, aaj ka program cancel karna hai bhai. Malviya Nagar bada
19: hai. Hey Mahadev. Are babu.
22: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
23: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
24: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
25: ए यू
26: सोच बदलो और बैंक भी।

धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे CBSE हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: ए यू
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे CBSE हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मसले पर पूरे सदस्य, चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे CBSE हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई।